0: आओ एक भीगी हुई सी कहानी सुनाता हूं। जब आसमान से बूंदे नहीं मोहब्बत बरसी थी, बरसात ने ऐसी धुन छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों बरसी थी।
1: अरे सुन सुन।
2: यस मां।
1: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
2: माँ मैं बाद में देख लूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ।
1: अरे सुन सुन, एक बार देख तो ले।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग।
2: 89.6 पे
0: रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीणा के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 75। आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो डीएस 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radios_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है, बोलिए, हम तैयार हैं।

0: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम, सश्रीकाल। दोस्तों, वक्त हो चुका है 10 बज चुके हैं इस वक्त। आप मेरे साथ टोन 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: गुड मॉर्निंग मैम।
2: गुड मॉर्निंग मैम, नाम क्या है आपका?
1: मैं माधोपुर से बोल रहे हैं मैम, आपकी फ्रेंड
2: मोनिका मीना जी।
1: हाँ जी, पहचान लिया मैम आपने। कैसे हैं मैम?
2: मैं ठीक है, और आप कैसे हो?
1: बस ऐसा लग रहा है तबीयत ठीक नहीं है हमारी मैम की।
2: नहीं, ऐसे ही है थोड़ा सा जी। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ऐसा है, आपके चाहने वाले आपकी आवाज से पहचान देंगी। दर्द बढ़ गया।
2: हाँ बिल्कुल,
1: आज में खनक नहीं आती ना, तो पता लगता है कि हाँ यार आवाज में खनक नहीं है आज मैडम के।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
1: जिंदगी है एक दर्द, इसे दवा का काम ले।
2: जिंदगी है एक दर्द,
1: हाँ इसे दवा का काम ले।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना।
1: शुक्रिया मैम,
2: वेलकम।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।
2: वेलकम। हेलो।
3: हेलो, नमस्ते मैम।
2: नमस्ते मैम, नाम क्या है आपका?
3: अंजना शर्मा।
2: अंजना जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
3: मैम गंगापुर सिटी से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
3: मैम गाने के बोले, कलियों ने घूंघट खोला, हर फूल पे भवरा डोला।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
3: थैंक यू मैम।
2: वेलकम।

0: गुड मॉर्निंग मैडम।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
0: जी मेरा नाम शरण सैफी है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: राजीव कॉलोनी सिंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मेरा आज गाना सुनना चाहते हैं हम, कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है चमाचम।
1: ओके
0: सर, पागल
1: करिए गाना।

0: हेलो
1: सर नमस्ते।
0: नमस्ते मैम।
1: सर नाम क्या है आपका?
0: नाम रूपचंद गोयल, जिला बाड़मेर राजस्थान।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: आज गीत सुनना है, पिक्चर का नाम है दामिनी और गीत के बोल है मैं पंख लगा के आया, सावन का मौसम लाया।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नाम क्या है आपका?
0: जी मेरा नाम चाहत शर्मा है, मैं गंगापुर सिटी मोमकला से बात कर रही हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से। कल रिमझिम बरसे बादरवा, मस्त हवाएं आई पियागर आजा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
4: वेलकम। हेलो
5: हेलो।
4: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
5: मीना।
4: कहाँ से बात कर रहे
5: हो? नागपुर से।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
5: बटरफ्लाई।
4: कौन सा?
5: बटरफ्लाई।
4: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा ना।

0: शेरनेक्सस।
1: हाँ जी, किमें लग गया है गाना लाइक कमेंट करके जरूर दस्यो। एंड थैंक यू सो मच नो कॉम्पीटिशन एल्बम इन्नी सपोर्ट करने के लिए। फॉर मोर वीडियोज सबसक्राइब की।

0: इकरार तो कोई बात
1: हेलो
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: विक्रम मेरा।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: कॉलोनी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मासूम शर्मा का।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी।
1: एक कटोरा जेल के भीतर।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर गाना।

0: नमस्ते।
1: ये नहीं निकलता 10-12 साल।

0: नमस्ते
1: नमस्ते, नाम क्या है आपका?
0: पलक।
1: कहाँ से बात कर रही हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: शीशा सॉन्ग।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: की से।
1: हेलो
2: सर, नमस्ते।
1: नमस्ते मैडम।
2: सर मैम क्या नमस्कार?
1: रफी खान लोगों मध्य के पीछे से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना सुनेंगे राव, तुम दिल की धड़कन में रहते हो।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: नाम तो बाबू कौन है?
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हूँ? गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: पिया है प्यार तो पड़ेगा निभाना।
0: वो किसा सुना रहे आपकी फरमाइश पर?

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
0: अमीन शाह पिलोगिया।
1: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: करना सके इकरार तो कोई बात नहीं, हमारे एतवार तो है।
1: वो किसा सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS,
2: शहर का नया मैजिक, रेडियो DS 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक, रेडियो DS 89.6।
4: हेलो,
5: हेलो।
4: हाँ जी, योगेश जांगड़े, मैं तेरा छत्तीसगढ़।
5: हाँ जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: जिंदगी एक सफर है सुहाना।
5: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: ममता।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो?
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे? कौन सा गाना?
1: कोई भी गाना लगा दूँ।
0: ओके।

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:01 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाई सिटी 9.6 रेडियो डीएस पर।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: लक्ष्य सैनी।
0: कहाँ से बात करूँ?
1: गंगापुर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: घोड़ा लंबी लंबी रेस का।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: सर नमस्ते।
0: नमस्ते जी, चौधरी निवेदन कर रहा हूँ।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आज नाव कागज की।
1: नाव कागज की
0: गहरा है पानी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: थैंक यू।
1: वेलकम।

0: सर नमस्ते।
1: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
0: शहजाद खान पुराने इंडिया।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: वो लिख लो आप, दिल वाले दिल वाले।
1: कौन सा सर?
0: ये वो लिख लो आप, क्या नाम है?
1: कौन सा वाला?
0: रेशमी सलवार कुर्ता जाली।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: अरे लौट आए।
1: हाय राम।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: 89.6 पे रेडियो DS।
4: DS साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावत और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
5: दोस्तों वक्त हो चुका है 11:14 का। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपके रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है मिराज दीन जी की। मिराज दीन जी ने हमें कॉल किया है पहलगांव कश्मीर से। सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो DS पर।

0: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: हेमंत।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: बड़ी लंबी कहानी मारे प्यार की।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए।

0: हेलो
1: हेलो सर, राधे राधे।
0: राधे राधे जी, नाम बताएं।
1: मेरा नाम समता जाधव है।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं समता जी?
1: बाढ़ कला से सर।
0: बताएं समता जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: मुझको गाना सुनना है जन जन की सुनो जनकार है दुनिया पैसे वालों की।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश के बेहतरीन ससुर।
2: रेडियो डीएस सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताएं सर।
1: कुमार कठवाला मिर्जापुर मिर्जापुर सिटी से।
0: सर आवाज कम आ रही है आपकी।
1: अभी विजय कुमार कठवाला मिर्जापुर गंगापुर सिटी।
0: हाँ बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सलाम है इश्क मेरी जात जरा कबूल कर लो।
0: हाँ जी,
1: सलाम है इश्क मेरी जात जरा कबूल कर लो।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे,
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।
4: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे,
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा।
5: नमस्ते सर
6: जी। नमस्ते, नाम बताएं सर।
5: मोहम्मद यासीन।
6: यासीन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
5: पाल से।
6: अजी
5: पाल से।
6: पाल से बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो DS से?
5: इवड़े सु दूर मत जाए, लग जाए तावड़ी और राजस्थानी।
6: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको राजस्थानी सॉन्ग।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: शुभ मीणा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: मासूम शर्मा।
1: ओके सर।

0: जी नमस्ते।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: संजय राम बोल रहा हूँ मैडम, दुर्गा से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: कमरे में खिलाया फूल फूल तो ले गया राज।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हाँ जी नाम क्या है?
1: नाम बता।
2: हेलो,
0: नाम क्या है आपका?
2: नाम मेरा अनमोल मीणा।
0: कहाँ से बात कर रहे
2: हैं? गंगापुर से, टीना से बोल रहा हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: मासूम शर्मा का।
0: मासूम शर्मा के कौन से? बहुत है गाने तो।
2: लो पर
0: ओके सर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे,
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वर 89.6 पे रेडियो DS 89.6 पे रेडियो DS।
4: DS साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मदीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: एक बर्फी फैक्ट्री बच्ची है।
1: नाम सुना रहे हैं आपके? फरमाइश करूँगी।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।
2: हेलो
3: हेलो।
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: सौरभ मीना।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: गंगापुर सिटी।
2: तो गाना सुनना चाहोगे
3: तो आके देख ले।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपके।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या
0: नाम? नाम अनमोल।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: पागल,
1: वो किसे सुना रहे आपके?
2: अज 14 साल बाद मुड़िया हाँ उन आरामां ते, देख के उही हवामां क्यों अज वधियां सावां ने। काश जे मिल जे तू ता जिंदगी सफल हो जावे, तू गीत मेरे दा कला कला लफ्ज हो जावे।

0: जिस दिन टूटे तेरा परिवार,
1: हेलो
2: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: लवली।
1: कहाँ से बात कर रहे
2: हो? रिको एरिया।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: खटोला वाला।
1: ओके सर, तुम्हारी आंखें फरमाइश करिए गाना।

89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

89.6 पे रेडियो डीएस गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ, AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: Dice Fakira.
1: रेडियो डीएस
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना। दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ आप सुनेंगे थोड़ी देर में नए तराने कार्यक्रम।
1: रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना
1: हीरो हो?
2: नहीं सर, सुपर हीरो। एक सच्चा हिंदुस्तानी किसी सुपर हीरो से कम नहीं होता सर।
1: और अगर तुम मारे गए तो?
2: अपने सब्र और यकीन को रोज बढ़ाना पड़ता है। चोले को बसंती और इरादों को फौलाद बनाना पड़ता है। यूं ही नहीं होती तिरंगे की हिफाजत। देशभक्तों को अपना खून बहाना पड़ता है।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: अरे बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
2: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
1: बहू को अभी 2 दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
2: 2 दिन 2 साल जैसा नहीं लग रहा, और बारिश भी आने वाली है।

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

0: क्यों सिमरन तू आ गई, मैंने तो लग गया तू आना ही नहीं। नाउ चड्डे फट्टे एंड बर्न द डांस फ्लोर।
1: डोंट वरी, आज डांस भी होगा और चांस भी।

दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर, मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना। दोस्तों फिलहाल कार्यक्रम सुन रहे हैं आप नए तराने। दोस्तों गंगापुर सिटी का तापमान वर्तमान 33 डिग्री सेल्सियस के साथ फिलहाल आनंद ले रहे हैं रेडियो डीएस 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वर 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है।
1: जब अपने ही शामिल हो दुश्मन की चाल में, तो शेर भी फंस जाता है कुत्तों के जाल में।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीना के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 75। आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो DS 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radios_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है, बोलिए, हम तैयार हैं।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाएं।

इस वक्त हो चुका है 1:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन 99.6 रेडियो डियास का गपुर सिटी का तड़का, मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले सुने थे नहे तराने कार्यक्रम, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे बोली विसरी यादें कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीना के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 75। आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो DS 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radios_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है, बोलिए, हम तैयार हैं।

सैटून 89.6 रेडियस गंगापुर सिटी का तड़का में आपके रेडियो दोस्त आरजे प्रणव। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:53 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू हो चुकी है, आप कॉल करें, अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा।
1: गुड इवनिंग दोस्तों, वक्त हो चुका है 4:00। इस वक्त आप मेरे साथ ढूल कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू वे गाने का। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

वक्त हो चुका है 4:10 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल कर अपनी फरमाइश को दर्ज कराए, हमारी स्टूडियो कॉलिंग खुल चुकी है।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मन पसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: अम्मा खान।
2: कहाँ से बात कर रहे
1: हैं?
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: डांडा नोए वाला का इश्तवावला सॉन्ग।
2: कौन सा?
1: डांडा नोए वाला का इश्तवावला।
2: इश्तवावला सुना रहे हैं आपके सामने।

0: सर प्रजापति श्री मथुरा से बात कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं, मौसम कैसा है?
1: सर मैं ठीक हूँ, बस अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश आ रही थी बहुत तेज।
0: जी यहाँ अभी बारिश हुई है लेकिन तेज नहीं, हल्की बारिश हुई है
1: और अभी भी बादल हो रही है।
0: जी बादल छाए हुए हैं, संभावना है थोड़ी बारिश और होगी।
1: आज
0: ये मौसम की बारिश, ये बारिश का मौसम, ये वाला गाना सुनना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है हॉफ गर्लफ्रेंड।
1: ओके सर, सुन रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार
1: नमस्कार।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है।
2: हेलो
3: बहन जी को नमस्कार जी।
2: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
3: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलू खेड़ा से।
2: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: राम से बड़ा राम का नाम, बनाए बिगड़े सबके काम।
2: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश।

नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगी? ओके मैम, सुना रहे हैं आप।

0: नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो?
1: नशे कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: मीना जी की मीनी आएगी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: जी, नाम बताइए सर।
0: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ मैं, ग्राम अकबरपुर, तहसील सुरन, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।
1: हारून जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: फिल्म का नाम है आशिकी, गाने के बोल हैं दिल का आलम।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश करेगा।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम हिमांशु मीना है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: तुम ही आना।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: दीदी, राधे राधे।
0: राधे राधे दीदी, कैसी हो?
1: ठीक है दीदी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम समता जाधव है।
1: हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
0: बाड़कला से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे दीदी?
0: मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्यों भीगे कमला कड़ी कड़ी।
1: बारिश हो रही है इसलिए छतरी के नीचे बुला रहे हो?
0: और क्या दीदी, अब तो बारिश सच में हो रही है अभी।
1: हाँ बारिश हो रही है बहुत तेज।
0: हाँ
1: सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: हाँ सुनाना दीदी।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: जी मेरा नाम है मोहम्मद केर।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: छत पर ना चला देना हम नींद में चलते हैं।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: बहुत आसान है।
1: हेलो मैडम नमस्कार।
2: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: मनोज सक्सेना मैडम।
2: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: नस्ल कॉलोनी मैडम।
2: कौन सा गाना सुनना चाहती सर?
1: मैडम राम लखन का है ना, वो राम जी बड़ा दुख दीना।
2: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश करूँगा।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है।

0: हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो
2: समझना चाहिए गाना
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो
1: डीएस 89.6
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतल रेडियो DS
2: बस मजाची है गाना
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: समझना चाहिए गाना
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: पसंद रांची है गाना,
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: अंजी अंजी अंजी ट्यून इन कर रखा है आपने रेडियो डीएस 89.6। और इस वक्त अगर आप गंगापुर सिटी में हो और मुझे सुन रहे हो गाड़ी चलाते वक्त, और अगर गाड़ी स्लोली चला रहे हो तो शुक्र मनाओ कि आप गंगापुर सिटी राजस्थान इंडिया में हो, क्योंकि इस वक्त अगर आप कनाडा में होते तो आपका चलान कट सकता था। बिल्कुल मैं मजाक नहीं कर रहा, कनाडा का ये रूल है कि वहां अगर आप बहुत धीमे गाड़ी चलाते हो, स्लो गाड़ी चलाते हो, तो आपका टिकट यानी कि चलान कट सकता है। लेकिन फिलहाल गानों का चलान नहीं कटने वाले, क्योंकि अमेजिंग बैक टू बैक गाने आपके लिए सिर्फ रेडियो डीएस 89.6 पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.

0: कई बार मैं सोचता हूँ कि काश मैं घोंगा होता तो फिर ट्यून इन कर रखा 99.6 रेडियो डीएस। और मैंने घोंगा नहीं घोंगा का, घोंगा इज अ हिंदी वर्ड फॉर स्नेल्स। और स्नेल क्यों बनना चाहता हूँ मैं, क्योंकि इनके पास एक ताकत है जो हम सब चाहेंगे कि काश ये ताकत हमारे पास भी हो। अब आप बोलोगे अरे भाई साहब स्नेल इतना छोटा सा स्नेल, इसके पास कौन सी ताकत? भैया सोने की ताकत। ये 3 साल तक बिना उठे, बिना आंखें खोले, बिना पलके झपकाए भैया सो सकते हैं। काश ये ताकत मेरे पास भी होता, आपके पास भी होता। पर फिलहाल मेरे पास एक ताकत है आपके लिए, अमेजिंग बैक टू बैक गाने प्ले करने वाला हूँ मैं रेडियो डीएस 89.6 पे।
1: गंगापुर सिटी की धरती पर रेडियो डीएस।

0: गंगापुर सिटी की धरतर
1: बस बस बस बहुत हुआ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा ट्यून इन कर रखा है आपने 89.6 रेडियो डीएस, और क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपनी बातें सुनना, जब भी मैं आता हूँ यार ये गाने रुक जाते हैं, पर गाने आपके लिए प्ले करो। उससे पहले आज का शो यही तक था। जाने से पहले यही कहूंगा कि
2: नफरत भी नहीं है तुमसे, गुस्सा भी नहीं हूँ। ओहो, नफरत भी नहीं हूँ तुमसे, गुस्सा भी नहीं हूँ, और तुम्हारा जिंदगी का भी हिस्सा भी नहीं हूँ। हाय हाय हाय, इतना क्रिंज पॉसिबल नहीं है, पर अमेजिंग गाने सुनना पॉसिबल है।
1: हां जी, तो कल फिर मिलूंगा सेम जगह सेम टाइम। फिलहाल सुनते रहो 89.6 रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। सफरनामे में आज हम बात करने जा रहे हैं मन्ना डे साहब की। हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में जब भी महान गायकों की बात आती है तो उनमें मोहम्मद रफी जी, किशोर कुमार जी, लता मंगेशकर जी के साथ साथ मन्ना डे का नाम जरूर लिया जाता है। मन्ना डे का जन्म 1 मई 1919 में कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। अपने सिंगिंग करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक शानदार गाने गाए हैं। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: बात कर रहे थे मन्ना डे के बारे में। आपको बता दूं कि मन्ना डे की प्रतिभा का लोहा मोहम्मद रफी जैसे बड़े सिंगर भी मानते थे। रफी जी खुलेआम उनकी तारीफ किया करते थे। एक बार रफी साहब ने मन्ना डे को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि लोग मेरे गाने सुनते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मन्ना डे के गाने सुनता हूँ। क्या खूब बात कही उन्होंने। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: Dim tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana na dir tana.
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर.

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। मन्ना डे को अपने करियर की शुरुआती दौर में अधिक प्रसिद्धि नहीं मिली। इसकी मुख्य वजह यही रही कि उनकी सदी हुई आवाज किसी अभिनेता पर फिट नहीं बैठती थी। यही कारण रहा कि एक जमाने में वो हास्य अभिनेता महमूद और चरित्र अभिनेता प्राण के लिए गीत गाने को मजबूर थे। प्राण के लिए उन्होंने फिल्म उपकार में कस्मे वादे, प्यार वफा और जंजीर में यारी है ईमान मेरा, यारी मेरी जिंदगी जैसे गीत गाए। उसी दौर में उन्होंने फिल्म पड़ोसन में हास्य अभिनेता महमूद के लिए चतुर नार गीत गाया। उन्हें महमूद की आवाज समझा जाने लगा था। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

नमादो लगत करे जवा में तो दुंग में तो हाय कहे चतुर बनत ठिठोरी करत हर जाई फुल गेंद बान मारो।

नारा जो गेंदवा कहलाए है, तन पर जहां गिरे पापी वहीं दाग पड़ जाए है। अंग अंग मोरा पीर करे और करके कहे कुल गेंद वाल मारो न मारो कुल गेंद।

के जवान मारो न मारो न मारो न मारो न मारो हाँ न मारो न मारो जगत कर जवा मिचो कर जवा मिचो कर जवा मिचो कर घर देखा सम

0: मारो लगत कर जमा में चोट, कर जमा में चोट, कर जमा में चोट।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। संगीत जगत से जुड़े लोगों को हैरानी होती है कि इतने मुश्किल गाने मन्ना डे इतनी आराम से कैसे गा लेते थे। मन्ना डे को मुश्किल गीत गाने में महारत हासिल थी। कहा जाता है कि जब कोई गाना मोहम्मद रफी जी या किशोर कुमार जी जैसे महान सिंगर नहीं गा पाते थे तो संगीतकार सीधा मन्ना डे के पास अपना गाना लेकर पहुंच जाया करते थे। बहुत ही उम्दा कलाकार थे। फिर लौटूंगी आपके पास आज के लिए सफरनामे में इतना ही। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।

राह मोहब्बत में कुछ कड़ियां ऐसी होती है जो जुड़ने पर ही समझ में आती है। मुझे तुम्हारा आज भी इंतजार है और मुझे यकीन है कि तुम जरूर आओगी।

गया है, लिखा हुआ है कि जोड़े आसमान में बनते हैं, हर इंसान का कहीं ना कहीं कोई ना कोई साथी इस दुनिया में है, और जब वो मिलते हैं तो इस कायनात में गीत गूंजते हैं। उसने भी इस बात पर तभी यकीन किया

0: जा सकूं?
1: इरा मैं तैयार ही हूँ, तू तो लिपस्टिक लगा ले पहले।

0: दुकान पे आयो। यहाँ से कपड़ा ले जाने के बाद लोगों को पता चला कि अच्छा कपड़ा होता क्या।
1: ऐसा तो कुछ न दिखाई दे रहा है।
2: आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूँ, मोहब्बत की दास्तान। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या